अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

वर्जनम भवबीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम श्री सीताराम महाराज की जय। संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत राम नाम।

प्रस्तुत है श्रीमद् भगवद गीता का सरल एवं संगीतमय हिंदी काव्यांतरण श्री गोविंद गीता अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि जगत के सभी जीव देव अथवा आसुरी स्वभाव के होते हैं। श्री भगवान दोनों के लक्षणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि असुर स्वभाव वाले जन्मों तक मुझे नहीं समझ पाते, वे अंततः अधम योनि को प्राप्त होते हैं।

श्री गोविंद काम क्रोध व लोभ को नरक के तीन द्वारों की संज्ञा देते हैं। वह कहते हैं कि काम के प्रभाव में शास्त्र विधि का त्याग करने वालों की गति असंभव है। अतः हे मानव, इन तम द्वारों से मुक्त होकर शास्त्रानुसार कर्मों में लीन

छत्तीसगढ़ की लाडली कन्या हूँ मैं। यहाँ तो नन्ही बालाओं के साथ चलते हुए चपल गति में छंद सीखा, तुतला कर बोलना, अधेर किसानों से सुना स्नेह संबोधन, साथ लेकर बह चली आगे की ओर। उड़ीसा बना यौवन की रंग भूमि। वहाँ मधुर प्रकृति के मनोहर गोद में नाची हूँ, गीत गाया है अपने प्रियतम सागर से मिल जाने तक।

सिहावा पर्वत शिखर से पारादीप के पास संगम तट की दूरी है 851 किलोमीटर। इसमें से महानदी 357 किलोमीटर मध्य प्रदेश में और 494 किलोमीटर उड़ीसा में बहती है। कहते हैं सिहावा में कभी श्रृंग ऋषि का पुराण प्रसिद्ध आश्रम था। आज भी सिहावा के पास की पहाड़ियों को यहाँ के लोग गर्ग, कुंभज और मुचकुंद आदि पुराण युग के विशिष्ट ऋषियों के नामों से ही जानते हैं। सिहावा गांव के छोटे छोटे खपरेल के घर, उनको छूकर बहती हुई महानदी की जीर्ण छीर्ण धारा, कैनवास पर किसी निपुण चित्रकार के हाथ से खिंचे चित्र की तरह दिख जाते हैं। यहां का शीतल मंद पवन मानो बहाए ले जा रहा है अतीत, बहुत दूर की बात, रामायण की कथा।

0: लोनपाद महाराजा के राज्य में अनावृष्टि के कारण दुर्भिक्ष पड़ा। राजा का आदेश पाकर जरता वेश्या श्रृंगी ऋषि को अपने रूप और सौंदर्य से वशीभूत कर वहां ले आई। फलस्वरूप राज्य भर में वृष्टिपात हुआ और साथ ही दुर्भिक्ष दूर हो गया।
1: अजन उन्हीं ब्रह्मचारी श्रृंगी के तप बल से छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी का उद्भव हुआ। महानदी की धारा पर्वत तट के गणेश घाट से ही दिखाई देने लगती है। ये बहुत पुराना पीपल का पेड़ है। गोविंदपुर गांव के निकट से निकली सोनामुखी धारा के साथ मिलकर ये महानदी नाम धारण करती आगे बढ़ती है और इसी के साथ साथ बहती चलती है सीता नदी। सिहावा और महानदी की महिमा के बारे में यहाँ के पुजारी श्री मुरली गिरधर कहते हैं,
2: तो यहाँ सिहावा गांव में बहुत से बहुत स्थान पाए गए हैं। उर्वा की ओर में नजदीक में शीतला

0: बने हुए देवी पाए गए हैं और उसी पहाड़ में माता शांता की गुफा वहाँ भी पाए गए हैं और इसी पहाड़ में दुर्गा महाकाली दुर्गे की स्थान गुफा यहाँ भी पाए गए हैं। यह गांव वाले भाइयों की रोजगारी केवल खेती बाड़ी इदो सिवाय और कोई गुंजाइश नहीं है।
1: कभी सुना है आपने छत्तीसगढ़ के सरल निष्कपट किसान विमल स्वरों में कैसे मेरा गुणगान करते हैं? सफेद चांदी जब मेरी देह पर चांदी की चादर उड़ा देती है तब उनका सम्मिलित स्वर मेरे किनारे के पहाड़ शिला वृक्षादि सबको मुग्ध कर देते हैं। मैं रुक कर सुनती हूँ। रुक रुक कर सुनती हूँ।

0: महानदी तट पर अवस्थित राजिम इलाके का पुराणों और इतिहास में बहुत महत्व है। यहाँ पर महानदी में उसकी सहायक नदियाँ पैरी और सोंढूर आ मिलती हैं और इस मिलन स्थली पर प्राचीन शिव मंदिर कुलेश्वर अवस्थित है। 9वीं शताब्दी में राजा विलासतुंग ने इसका निर्माण किया था। राजिम का महत्व बताते हुए लेखक पुरुषोत्तम अनासक्त बताते हैं,
1: महानदी छत्तीसगढ़ की गंगा है और राजिम छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। महानदी ने छत्तीसगढ़ को उपजाऊ धरती दी है और धान की खेती इस इलाके की सबसे बड़ी विशेषता है। लोग इसे धान का कटोरा भी कहते हैं। लोग यहाँ तक कहते हैं कि भगवान श्री राम के जन्म से छत्तीसगढ़ का संबंध रहा है। ऐसा कहा जाता है कि महानदी के रेत में सोना मिला करता था। सही बात तो यह है कि सोंढूर का नाम ही छत्तीसगढ़ के लोगों ने रखा है, सोना जिसमें ढुलता हो, सोना जिसमें से आता हो। और पहले लोग यहाँ से सोना निकाल लिया करते थे। राजिम एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। राजिम में भगवान श्री राजीव लोचन का विख्यात मंदिर है और इसमें आदमकद प्रतिमा है भगवान विष्णु की। वह विष्णु की प्रतिमा यज्ञ पुरुष के रूप में स्थापित है। राजिम वैष्णव तीर्थ भी है, राजिम शैव तीर्थ भी है और राजिम जो है वो जैनियों का भी तीर्थ रहा है, क्योंकि उसके भी कुछ चिन्ह यहाँ मिलते हैं। गुरु घासीदास जी इसी इलाके के हैं। इसके अलावे और कुछ ऐसे व्यक्ति भी जन्म लिए जिनके विषय में इतिहास तो मौन है, लेकिन दंत कथाएँ प्रचलित हैं। एक बहुत ही आदिवासी नायक जो बड़ा प्रसिद्ध रहा है, जिसका नाम है कचना धुरुआ, वो इसी इलाके का था।
0: स्वतंत्रता संग्राम में भी छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने यहाँ अस्पृश्यता निवारण के लिए कठोर संघर्ष किया। श्री अनासक्त जी कहते हैं,
1: स्वतंत्रता संग्राम में महानदी के तट पर रहने वाले लोग बहुत अधिक सक्रिय रूप से भाग लिए और उसमें धमतरी का स्थान भी महत्वपूर्ण है। धमतरी के पास कंडेर नामक एक गांव है जहां से सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। धमतरी में उस समय छोटे लाल बाबू थे, नत्थू जी जगताप थे, नारायण राव जी मेघावाले थे। ये तमाम लोग स्वतंत्रता संग्राम के महानतम सेनानियों में से हैं। मैं इनका नाम जिनका ले रहा हूँ। और इसी इलाके में पंडित रविशंकर जी शुक्ल ने भी इनके सहयोग से स्वतंत्रता आंदोलन को तीव्र किया था। राजिम में उस समय पंडित सुंदरलाल जी शर्मा थे जिन्होंने अस्पृश्यता निवारण का कार्य शुरू किया और जिससे गांधी जी भी बहुत अधिक प्रभावित हुए। रामायण और महाभारत भारतवर्ष की ऐसी रचनाएं हैं और ऐसे महाकाव्य हैं कि हर इलाके में इनका प्रभाव

जीवन पर पड़ा है। महाभारत का प्रभाव बहुत अधिक इस इलाके पर पड़ा और यहाँ के स्थानीय लोगों ने अपनी भाषा में महाभारत को कहना शुरू किया, जिससे पंडवानी का जन्म हुआ।

0: छत्तीसगढ़ के महानदी क्षेत्र में हुए जनजागरण और लोक भाषाओं के विकास के बारे में लेखक नारायण लाल परमार जी का मत है।
1: नहर सत्याग्रह कंडेल में हुआ था, जंगल सत्याग्रह रुद्री के पास हुआ था। वो नहर सत्याग्रह, नहर का पानी नहीं लेने देती थी सरकार, तो उसके खिलाफ लोगों ने आंदोलन शुरू किया। वहाँ उस सिलसिले में भी गांधी जी आए थे यहाँ। तो ये क्षेत्र भी इस लोक कला की दृष्टि से बड़ा धनवान रहा है। अभी हमारे क्षेत्र में दो ही ऐसे व्यक्तित्व हैं, एक तो अपने बघेरा के दाऊ रामचंद्र देशमुख, और दूसरे जो आपके हबीब तरवी साहब हैं। अब भट्टरी की कलाकार भी आपको बिलासपुर में मिल जाएगी, सुरेश भाई खांडे। तो इस तरह से हर कला क्षेत्र में यहाँ आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे।
0: महानदी के तट पर एक और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है सिरपुर। पहले यह शरवपुरी राजाओं के अधीन था। यहाँ पर है प्राचीन गंधेश्वर महादेव का मंदिर। 8वीं शताब्दी के सोमवंशी राजा महाशिव गुप्त द्वारा निर्मित बौद्ध विहार यहाँ की महत्वपूर्ण प्राचीन कीर्ति है। रायपुर से कसडोल होते हुए आने पर गिधौरी में महानदी पार करने पर पड़ता है शबरी नारायण मंदिर। भगवान रामचंद्र की यहाँ पर शबर राजा पूजा करते थे। उनकी स्मृति में देवता का नाम शबरी नारायण या शिवरी नारायण हो गया है।
2: शैशव और किशोरावस्था का क्षण और चंचल दिन बिताकर उन्हें पीछे छोड़ते हुए मैं विकसित होती गई, पल्लवित होती गई। यौवन की ज्वार से मैं हुई विमुक्त। फिर उड़ीसा की धरती छूटी हो, यौवन की प्रगल्भता से भरी। यहाँ मैं नायिका हूँ, कभी गुमान भरी तो कभी प्रगल्भा। भारत में इतनी नदियां हैं, किसी को तो महानदी कहकर पुकारा नहीं जाता। मुझे ही यह गौरव मिला है। हाँ, एक नाम और है मेरा, चित्रोत्पला।

मेरी यात्रा भूमि उड़ीसा में जगन्नाथ पधारे। कहा जाता है कि आज के इस जगन्नाथ मंदिर का निर्माण सदियों पहले हुआ था। संबलपुर, सोनपुर और बिनिका के ऊपर शैया पर लोट कर मैं आवेश और रोमांच में सिहार उठी। मुझे लगा प्रियतम मिलन का पथ यही है। धान का भंडार भरा है इस धरती पर। मेरी गति चंचल हो उठी।

0: महानदी के तटवर्ती संबलपुर, सोनपुर, बिनिका आदि इलाके ऐतिहासिक और पुरातत्व की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर चितरंजन मिश्र बताते हैं,
1: महानदी कूलरे अवस्थित थिबा दर्शनीय स्थान मानक मध्यरु हुमार बक्र मंदिर होचे एक सर्वश्रेष्ठ दर्शन।
0: महानदी के किनारे अवस्थित हुमा का बक्र मंदिर एक विशिष्ट दर्शनीय स्थान है। ये बक्र मंदिर
1: निर्माण
0: बक्र शैली में तैयार किया गया था या बाद में किसी कारण यह वक्र रूप हो गया था, इस विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा की तरह ये दर्शकों के लिए कौतूहल की सृष्टि करता है। ये मंदिर महानदी के किनारे स्थित 8 शिव मंदिरों में अन्यतम है।
1: विश्वनाथ संबलपुर जिपुर मानेश्वर सेपरी हुमार ये बिमलेश्वर मंदिर टी ऐतिहासिक दृष्टिकोण एवं धार्मिक दृष्टिकोण मध्य सुप्रसिद्ध।
0: महानदी के इन इलाकों में अनेक कलाकार, चिंतक, मनीषी, साहित्यकारों का आविर्भाव हुआ है। बौद्ध दर्शन की शाखाएं जैसे वज्रयान और तंत्रयान का विकास यहाँ हुआ था। संत कवि भीम भोई ने इसी के तटवर्ती छोटे से गांव खलियापल्ली को अपनी कर्मभूमि के रूप में चुना। स्वभाव कवि गंगाधर मेहर ने महानदी तटवर्ती अरण्य सुषमा को काव्य भाषा देकर जीवंत कर डाला। इस क्षेत्र की महिमा व समस्या के बारे में बुद्धिजीवी डॉक्टर श्रद्धाकर सुपकार कहते हैं,
2: महानदी ऊंचे और माँ आप बराबर हमको पालन करे अच्छी महापुरी।
0: पश्चिम उड़ीसा के संबलपुर अंचल की भाषा संस्कृति की एक अलग मिठास है। इस अंचल के अनेक वीर सपूतों ने स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महानदी इस अंचल की माँ है, लेकिन प्रदूषण के कारण अब महानदी का जल व्यवहार के योग्य नहीं रह गया है।
2: एठाकार पर्व परमाणी नुआखाई पुष्पनी विशेष कर ये जो कृषि संस्कृति ये आमर होती विशेषत्व।

0: महानदी में प्राचीन काल में नौ वाणिज्य चलता था। अभी से एक बार फिर राष्ट्रीय जलपथ के रूप में परिणत किया जा सकता है। इस विषय पर उड़ीसा विधानसभा के सदस्य श्री पंचानन मिश्र ने अपना विचार कुछ इस तरह से व्यक्त किया है।
1: महानदी को आमर पूर्वपुरुष माने ए भारत वर्षरे चित्रोत्पला गंगा भावरे नामित करिसेंदे एवं मानि आछेंदे।
0: हमारे पूर्वजों ने महानदी को चित्रोत्पला गंगा का नाम दिया था। इस महानदी में उड़ीसा में अभ्यंतरीण नौ वाणिज्य चलता था। वर्तमान में सरकार के वाटरवे कमीशन द्वारा नदियों के जलपथ के विकास के लिए जो योजना बन रही है उसके अनुसार महानदी के लिए भी योजना होनी चाहिए।
1: एठी जो विदेशी पक्षी सब आसंती हिमालयन बर्ड्स संबलपुर पाखरु धमाठारु प्राय बहुत पर्यंत ए माने लक्षाधिक परिमाण रे एठी ठुलो।
0: महानदी के इस अंचल में शीतकाल में बहुत विदेशी पक्षी आते हैं। इसी दृष्टिकोण से इस इलाके में पर्यटन के लिए विकास होना चाहिए।

हाँ मैं ही यहाँ गिरिराज नंदिनी हूँ। बाघ भालू हो या दंतावल हाथी या कुलांश भरते मृगों का झुंड, सब यहाँ निर्भय होकर विचरण करते हैं। दंतावल हाथी के गंड स्थल से निकलती हुई मदजल मेरे वक्ष स्थल को अप्लावित कर देती है। बिजली की तरह दौड़ते मृग शावक मेरे स्थिर नील जल में छवि निहार कर आश्चर्य से ठिठक जाते हैं। शीतकालीन दूर हिमगिरी से आने वाली अतिथि पक्षी खूब आनंद में किलोल करते विचरते दिख जाते हैं मेरे तट पर।

0: महानदी का यह 7 कोसी खाल और इस गहरे विशाल खाल के दोनों ओर शैल राजी का मनोरम दृश्य। 7 कोस के घेरे में फैला ये खाल चार चार जिलों कटक, पुरी, फूलवाड़ी और ढेकानाल की सीमा को स्पर्श करता है। 7 कोसी खाल के निकट ही तिकरपड़ा एक और अलग स्थल है। दोनों ओर घने वन, नदी तट पर घड़ियालों को पालने, पोषित करने और विवर्धित करने का प्रयास जोरों पर है। सरकारी योजना से इसको एक विशिष्ट अभ्यारण्य के रूप में और गरिमा मिल गई है। वहाँ के वन खंड अधिकारी श्री सुरेश चंद्र मिश्र के अनुसार,
1: 7 कोसिया गंड अभयारण्य आमर विशेषकर अनुगुल वनखंड इलाका रे जोटा अभयारण्य भीतर
0: महानदी के तट पर टिकरपड़ा अभयारण्य 795 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। इस अभयारण्य में दुर्लभ जीव जंतु हैं। महानदी का 7 कोसिया खाल इस अभयारण्य के क्षेत्र में है। यहाँ पर एक समय बहुत मगरमच्छ रहते थे। उनके वंश की समाप्ति के बाद 1975 में विश्व खाद्य संगठन की सहायता से भारत सरकार ने एक कुंभीर योजना शुरू की। उसी वर्ष नेपाल से लाए गए अंडों से 250 मगरमच्छ उत्पन्न हुए। इस योजना के फलस्वरूप उड़ीसा में घड़ियालों की संख्या में वृद्धि हुई और इन घड़ियालों के चमड़े से एक लाभदायक व्यवसाय की शुरुआत हो सकती है। महानदी के तट पर तीर्थों की तो माला बनी है। सोनपुर, बांकी, कंटीलो, वैदेश्वर, भट्टारिका, ध्वनेश्वर आदि अनगिनत स्थल, पैरी, सोंढूर, ईव, जीरा, तेल आदि उपनदियों का जल स्रोत अपने हृदय में धारण कर महानदी समुद्र की ओर चलती है। अनगिनत तीर्थों की धूली अपने अंदर समेट कर इटलाती मंद मंद चल रही युग युग से, सदियों से।

बाराबाटी दुर्ग के निकट से बहकर गुजरते हुए देख पाती हूँ इतिहास की विजय यात्रा। बाराबाटी दुर्ग ठहरा इतिहास के इस सारे उत्थान पतन से भरे इतिहास का मूक साक्षी।

स्वाधीनता के बाद भारत के पुनर्गठन और विकास पर्व में महानदी ने उल्लेखनीय भूमिका ग्रहण की है। मध्य प्रदेश में दूधवा गंगरेल आदि जलाशय बने, उड़ीसा में फिर हीराकुद बांध बनने पर बहुमुखी विकास के द्वार खुल गए।

निकट विद्याधरपुर में धान अनुसंधान केंद्र की स्थापना देश में कृषि विकास की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एशिया महादेश के चावल के अनुसंधान में गौरवपूर्ण तीर्थ बनकर नया रूप ले रहा है। महानदी पारादीप के पास फॉल्स पॉइंट पर से जाकर सागर में मिलती है। सभ्यता की शिल्प की इतनी प्रगति होने पर भी आदमी के मन में बर्बरता का राज है। वो बदला जा रहा है, वो स्वार्थी बनता जा रहा है, स्वेच्छाचारी बनता जा रहा है। इस शिल्प सभ्यता के तहत प्राकृतिक संपदाओं का ध्वंस करने में लगा है। जंगलों का लोप होता जा रहा है, नदी का नील जल कारखानों की उपस्थिति में दूषित होता जा रहा है, प्रकृति अपना संतुलन खो रही है। महानदी से भला कैसे बचे रह सकती? सभ्यता का अभिशाप उसे भी धारण करना पड़ेगा। विष के जीवाणु इससे जीवन को बचाकर रखना जरूरी है।

0: इस प्रकार
1: मैं बहती चली
0: जा रही है,
1: युगों से चल रही है, चलती ही रहेगी, देखती जाएगी
0: सभ्यता का
1: आगमन,
0: आदमी के आंसू पसीने के संग्राम में
1: महाजीवन के स्रोत
0: की तरह
1: महासागर के साथ
0: मिलकर
1: एकाकार होने के लिए
0: दौड़ रही है।
1: ये
0: महानदी
1: युग युग से
0: सदियों से

भक्त जनों, आइए आज अपने भीतर अपनी अंतरात्मा का साक्षात्कार करें और उसी से कुछ प्रश्नोत्तर करें। प्रश्न है,

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: शिव महिमा के प्रभाव से देवराज नामक ब्राह्मण के उद्धार की कथा आप सुन चुके हैं। आज सुनिए शिव पुराण के पहले सर्ग की दूसरी कथा।
1: महाभाग दूसरी। आप सर्वज्ञ हैं। देवराज ब्राह्मण की कथा सुनकर मेरा मन आनंद से भर उठा है। अतः शिव के चरणों में आस्था जगाने वाली दूसरी कथा भी सुनाइए।
2: शौनक सुनो, समुद्र के निकट एक ग्राम था जहां दुराचारी लोगों का निवास था। वे ना तो देवताओं में विश्वास करते थे और ना भाग्य पर। वे सभी पशु बुद्धि वाले लोग थे। वहां एक समय बिंदुक नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी शील स्वभाव वाली अत्यंत सुंदरी थी, किंतु बिंदुक वैश्यगामी और कुमार्ग पर चलने वाला था। उसके दुष्प्रभाव से आगे चलकर उसकी पत्नी चंचला भी दुराचारिणी हो गई, किंतु शिव पुराण की महिमा से उसका उद्धार हुआ और मोक्ष प्राप्त करके वो महादेवी पार्वती की प्रिय सखी बन गई।
1: हे सूची, ये अत्यंत मनोरम कथा जान पड़ती है। वो चंचला नामक स्त्री देवी पार्वती की प्रिय सखी कैसे बनी?
2: शौनक, इस मनोहारी कथा को सुनने के लिए हम भगवान शंकर के निवास कैलाश पर्वत पर चलते हैं, जहां देवी उमा अपनी सखी चंचला के साथ विराजमान है। चंचला के उद्धार की कथा हम उन्हीं से सुनेंगे।

0: आज्ञा महादेवी, क्या तुम अपने मृत्युलोक के जीवन के बारे में मुझे बताना चाहोगी?
1: अवश्य माता जगदम्बे। मादी, मैं बिंदुक नामक ब्राह्मण की पत्नी थी जो बुरी संगत के कारण कुमार्ग पर चलने लगे थे। उनकी मृत्यु के बाद विधवा होकर मैं अपने बंधुजनों के साथ रहने लगी। मैं सुंदरी और युवा थी।
2: चंचला, देवी चंचला।
1: कौन है?
2: मैं हूँ, जयदेव।
1: जयदेव, आप पधारिए।
2: एक विशेष काम से आया हूँ देवी।
1: जी, कहिए।
2: तुम्हें पता है, पास के गोकर्ण में एक विशाल मेला लगने वाला है। गांव के अनेक लोग जा रहे हैं वहाँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगी?
1: जी, मैं मेले में?
2: हाँ, थोड़ा मन बहल जाएगा।
1: किंतु मैं अकेली।
2: अरे चिंता की क्या बात है, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। और फिर गांव के अनेक लोग भी तो हैं।
1: किंतु वहाँ रहने की व्यवस्था?
2: उसका सब प्रबंध हो चुका है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। बस तुम हाँ कर दो।
1: किंतु
2: देखो, अब किंतु परंतु कुछ नहीं। क्या तुम मेरा इतना सा अनुरोध स्वीकार नहीं करोगी? तुम्हारे मौन को स्वीकृति समझूं? ठीक है, मैं कल सवेरे तुमको लेने आऊंगा, तैयार रहना।
1: परंतु
2: देखो चंचला, यहाँ बहुत भीड़ है। अब हाथ पकड़ लो, अन्यथा बिछुड़ जाने का डर है।
1: अच्छा, ठीक है।
2: देखो कितना मनोरम तट। कुछ देर विश्राम कर ले, फिर स्नान करके वापस लौट चलेंगे।
1: हाँ, देखिए उस घाट पर महिलाएं स्नान कर रही हैं। मैं उधर ही चली जाती हूँ।
2: ठीक है, लेकिन पानी में दूर तक ना जाना, जहाँ मगर भी हैं।
1: अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूँ।
2: मेरे इच्छाएं संपूर्ण कर दो गंगे। बहुत बहुत शीतल जल है, आज तो स्नान में मजा आ गया। चंचला, अरे उधर कहाँ जा रही है? चंचला, चंचला, उधर उधर मगर है। वही तुम्हारा निकट। ठहरो ठहरो, मैं आ रहा हूँ, तुम वही रहना। चंचला, मुझे पता है। दोनों हाथों से इधर पानी का बहाव अधिक तीव्र है। डरो नहीं चंचला, कच्चे पकड़ लो। ऐसे ही ठीक है, बस बस, अब कोई भय नहीं।
1: तुमने मुझे बचा लिया है, अन्यथा मैं तो नहीं भूल सकती। नहीं नहीं, मेरा मन

0: 我，सपने में ही सही मैंने दुराचार किया है, मुझसे पाप हुआ है, मुझे मुझे क्षमा करो देव, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो।
1: चंचला?
0: जयदेव, तुम?
1: हाँ, मैं। क्या हुआ?
0: जयदेव, तुम चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।
1: लेकिन क्यों?
0: मैंने कहा ना, मैं नहीं जाऊंगी, बस और कुछ नहीं।
1: तो क्या तुम यहीं रहोगी?
0: पता नहीं, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे डर लगता है।
1: चंचला,
0: मुझे मत छुओ, मुझे दूर रहो। मैं विधवा हूँ, पर पुरुष का साथ भी अनुचित है।
1: संचला, तुम मुझे अब भी पराया समझती हो?
0: हाँ, आगे मत बढ़ना, वरना मैं शोर मचा दूंगी।
1: अच्छा, जाता हूँ मैं। ये तो बता दो, मेरा अपराध क्या है?
0: अपराध तुमने नहीं, मैंने किया है जयदेव, मैंने किया है। लेकिन लेकिन मुझे प्रायश्चित करना होगा। जयदेव, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे हाल पर छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मुझसे मिलने का कभी कभी व्यर्थ में ना करना।
1: अच्छा, जाता हूँ।

कैसा मनोरम वातावरण है, मन जैसे नहा गया हो। बोलो शिव शंकर भोले भंडारी की जय, नीलकंठ महादेव की जय।

0: बेटी, तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो?
1: महाराज, मैं नहीं जानती कि कहाँ जाऊँ।
0: क्यों, क्या तुम्हारा कोई नहीं है?
1: कोई नहीं है स्वामी जी, अकेली हूँ, कोई आसरा नहीं। जब आप मुझे यहाँ ठहरने की अनुमति देंगे?
0: बेटी, ये शिव धाम है, यहाँ के द्वार सबके लिए खुले हैं।

0: हे महाभागे चंचला, तुमने मृत्युलोक में मेरी स्तुति करके ही ये पुण्य अर्जित किया है। तुम अनंत काल तक शिवलोक में रहने की अधिकारिणी हो, तुम्हारी और क्या इच्छा है?
1: हे शिव शंकर, आपके चरणों में बने रहने की इच्छा से बढ़कर भला और कौन सी इच्छा हो सकती है?
0: तथास्तु। महादेवी पार्वती, क्या आप चंचला की पुण्य आत्मा को अपनी सखी के रूप में स्वीकार करेंगी?
2: इससे अधिक प्रसन्नता की बात और क्या हो सकती है महादेव? आपकी ये इच्छा मेरे मन के अनुकूल है देव। सखी चंचला, तुम्हारी कथा सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुई। बोलो, तुम्हें कौन सा वर दूं?
1: माता जगदम्बे, मुझ पर आपकी कृपा का कोई अंत नहीं है। यदि आप मुझ पर अत्यंत प्रसन्न हैं, तो मेरी एक कामना और पूरी कर दीजिए।
2: कहो, निसंकोच कहो चंचला।
1: हे गिरिजा कुमारी, मेरे पति देव बिंदुक इस समय कहाँ हैं? मैं नहीं जानती, न जाने वो किस गति को प्राप्त हुए।
2: बेटी, तुम्हारा पति बिंदुक बड़ा पापी था। वो इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच की योनि में पड़ा हुआ है, अपने शेष पापों का फल भोग रहा है।
1: महादेवी, मैं केवल यही वर मांगती हूँ कि मेरे पति का अब उद्धार कर दीजिए।
2: तुम्रु?
3: आज्ञा मातेश्वरी।

0: तुम शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक भयंकर पिशाच रहता है। उसे किसी भी प्रकार शिव पुराण की कथा सुनाओ। कथा सुनने से वो सभी पापों से मुक्त हो जाएगा।
1: जैसी आज्ञा महादेवी।
2: किसने दुस्साहस किया कि मुझे आदेश दे? मैं संसार के सभी नियमों को तोड़कर सर्वनाश की ओर ले जाने वाला महापिशाच हूँ।
3: हे पिशाच, लो शिव का पाश, होगा तुम्हारी घिनौनी वृत्ति का नाश।

0: अरे अरे बचाओ, मरा रे, अरे अरे ये कैसा बंधन है, मुझे इससे मुक्त कर दो मुझे इससे।
1: तुम्हें मुक्त करने का हमें अधिकार नहीं। चलो, देव तुम्ब्रू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: हाँ, हे पिशाच, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा इस योनि में अनेक दुख क्यों भोग रही है? क्या तू इससे मुक्ति पाना नहीं चाहता?
3: मेरी मुक्ति भला कैसे संभव है? जीवन भर अनेक कुकर्म किए, उनका फल तो मुझे भोगना ही होगा ना।
2: पिछले जन्म की तेरी पत्नी चंचला शिव जी की कृपा से माता पार्वती की परम सखी बन गई है। माता जगदम्बा के आदेश से हम तुझे शिव पुराण की कथा सुनाने आए हैं। शांत चित्त होकर सुनो।

0: हे तुम्बरु, आपके सुखमय वचनों से मेरा मन शुद्ध हो गया है। मैं भगवान शंकर के चरणों में अपना शेष समय बिताना चाहता हूँ। मुझे ऐसा विधान बताइए जिससे मुझे भगवान शंकर का सानिध्य प्राप्त हो।
1: हे बिंदु, शिव महिमा के सुनने से तुम्हारी आत्मा ना केवल पिशाच योनि से ही मुक्त हुई है, बल्कि पूर्व जन्मों के सभी पापों से तुम मुक्त हो गए हो। इसलिए अब तुम शिवलोक पहुंचने के अधिकारी हो गए हो। चलो मेरे साथ आओ।
0: मैं कृतार्थ हुआ भगवान।

0: हे माता पार्वती, आपके आदेश का पालन कर मैं बिंदुक नामक व्यक्ति की आत्मा को ले आया हूँ। बिंदुक, माता पार्वती को प्रणाम करो।
1: हे माता पार्वती, मुझे अपने सौभाग्य पर विश्वास नहीं होता। मैं माता बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए महादेवी, स्थान दीजिए।
2: मिलेगा, अवश्य मिलेगा। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये तुम्हारी पूर्व जन्म की पत्नी चंचला के सत्कर्मों का ही फल है। अब तुम अनंत काल तक शिव लोक में रह सकते हो।
1: आपकी जय हो मातेश्वरी, जय हो।
3: हे सूत जी, चंचला और बिंदु की मोक्ष प्राप्ति की कथा सुनकर मैं धन्य हुआ।
4: हे शौनक मुनि, चंचला और बिंदु की यह कथा शिव पुराण की महिमा को बताने वाली है। संसार के सभी मनुष्य शिव पुराण की कथा सुनकर मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है।

हासता भूमि कन्या मनु मनी लादे तृप्त गाहले सचिंत लोचन क्षणात जनकाते तृप्त गाहले सचिंत

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मजा नहीं आ रहा है, बोल जरा तबीयत से बजाने को।
1: अरे तबीयत खुश हो जाएगी, ऐसा बजवाऊंगी क्योंकि आपके मेरे हम सब के बप्पा आए हैं। अरे बजाओ रे बजाओ।

राम जी की आंखें भर आती हैं और अपनी खड़ाऊ भरत जी को देते हुए अयोध्या की गद्दी संभालने के लिए वचन लेते हुए विदा करते हैं।

प्रभु श्री राम भरत जी को विदा कर पहुंचते हैं पंचवटी, जहां पर 14 वर्ष बिताने का निर्णय लेते हैं। तभी सूपनखा वन में घूमते घूमते प्रभु श्री राम को देख मुग्ध हो उठती है और राम से विवाह करने का प्रस्ताव कुछ इस प्रकार से रखती है।

प्रभु श्री राम सूपनखा का आत्मनिवेदन न मानते हुए अपने भाई लक्ष्मण को इशारा करते हैं और भाई लक्ष्मण अपने प्रभु राम जी का आदेश पाते ही तीर से सूपनखा की नाक काट लेते हैं। और उधर रावण के दरबार में राग रंग उत्साह जेहर देखा हर तरफ खाली वाहे वाह। इतने में रोवत उहां गैल सूपनखा आए, पड़ल रंग में भंग औ गैल सनाका छाए। और यह देख रावण अपनी बहन का हाल मारीच को समझा बुझाकर उसे स्वर्ण मृग के रूप में पंचवटी भेजते हैं।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा

बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

अर्थात ते अग्निसमान वर्णवाळा ज्ञानथी जळहळता दीप्ती प्रकाशशाली कर्मफलनी प्राप्तीना हेतुमाटी सेवाता असुरोना नाशक ए दुर्गा देवीने प्रणाम करीए छीए।

आ भगवती कात्यायनीनी स्तुति सप्तशती चंडी पाठ में अपन अग्यारमा अध्याय में बहुत सुंदर मळी आवे छे, एना थोड़ा श्लोकों नु पण अहीं निरूपण करीशुं।

शरणागत ने पीड़ा हरनारा देवी आप प्रसन्न था। समस्त जगत नी माता आप प्रसन्न था। विश्वेश्वरी प्रसन्न था। हे महादेवी तमे चराचर जगत ना स्वामी नी छो। विश्वनु रक्षण कर।

हे परांबर, तमे आ जगत पृथ्वीनो एकमात्र आधार छो। हे अलंघ्य पराक्रम वाला देवी, जल स्वरूप में रहेला अपना थी अखो विश्व विकसित करी तृप्त करी देवाई।

हे कात्यायनी देवी, हे देवी, अनंत पराक्रम वाला आप वैषमी शक्ति छो, विश्वना कारण रूप आप मूल प्रकृति छो, अखा जगत ने आपे मोहित करी नाख्यू छे।

हे महादेवी, समस्त विद्याओं आपनु भिन्न भिन्न स्वरूप छे। जगत में जेटली स्त्रीओ छे ए तमारा ज स्वरूप। आहा, कितलो भव्य विचार। खरेखर नारी मात्र नु सम्मान कितलू बधु अहीं करवामां आव्युं छे। कदाचित नर ए क्रोध होय पण नारी ए शांति छे। नर ए गृहपति छे तो नारी गृहलक्ष्मी छे। लज्जा, विनय, संयम, संतोष, क्षमा, मित मधुर संभाषण तो ए साथे छे। समता, सहिष्णुता, निरभिमानिता, श्रमशीलता, मितव्ययिता, उदारता, सेवा, शुश्रूषा आदि गुणोथी विभूषित दरेक नारी समाजनी शोभा छे। ए परांबानु स्वरूप छे। आ संदर्भमां यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। એ મનુસ્મૃતિનું વાક્ય તો જાણીતું જ છે કે જ્યાં નારીનું સન્માન છે ત્યાં સર્વ દેવોનું સન્માન થાય છે।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

एक सच्चा हरि भक्त जीवन भर ईश्वर दर्शन की आस लिए, हरि मिलन की प्यास लिए पल पल तड़पता है, तरसता है कि उस पर भी हरि कृपा कर दे। भक्तों का तारनहार, जगत का पालनहार हर युग में अवतार लेता है, कभी अवधपति राम तो कभी गोकुल का श्याम बनकर। बाल कृष्ण की एक झलक पाने के लिए तुलसी, नानक, सूरदास, मीराबाई, एकनाथ, तुकाराम और नरसिंह मेहता ने आराधना की, तपस्या की और वो सफल हुए। हरि दर्शन का प्यासा भक्त ईश्वर से कई सवाल करता है कि उसमें क्या कमी है, उसकी भक्ति में क्या कसर है कि परमात्मा उससे इतनी दूरी बनाए रखता है।